0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो चीज आसमानों में है और जो चीज जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करती है कि जो बादशाह हकीकी पाक ज़ात जबरदस्त हिकमत वाला है।
1: वॉइस ऑफ नॉर्वे से मैं हूं आपकी प्रेजेंटर अंबर हकान। खूबसूरत नगमात, अछूते खाके, कौमी खबरें, बैनुल अक्वामी खबरें, खेलों की खबरें।

currency rates. पल-पल की खबर हर पल आपकी पहचान आपकी जबान आपकी आवाज वॉइस ऑफ नॉर्वे।

0: आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं।
1: ये तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल वॉइस ऑफ नॉर्वे। इस कौमी नगम के साथ ही रेडियो इश्क़ की नशियात का वक्त खत्म हो जाएगा। ये प्रोग्राम आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी थर्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और ट्रस्ट गिल्ड काउंस खाता मॉस के तावन से सुना, और इस प्रोग्राम को आप तक पेश करने में मेरा साथ दिया तनवीर अफजल खान, मिसेस ए खान और मिस गिरी ने। इजाज़तें, अल्लाह निगहबान।